याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षां पन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

0: जय श्री वेवा।
1: इसे स्वामिनी उप सबिन्म सुशुद्ध सिल सुशुद्धता वे उल्पत बोहन से में यही नुबहन से गे आत्म नंगे अनुभावेन में पांडु परिशुद्धवाद करण में नपियाय दिब अपे से अदुने में पांडु अपुदेसा अपे स्वामीन वन जेसुस क्रिस्तुन महान से गे श्री शरीर श्री रुधिर बावट पत्वनु संदहाय उन महान से दुख सहित मरनेट सिय कमेत्तिन पू कमेत्तिन पवरादिय मिट पेर पूपे रागेनु बहान से तुति पुदा एक खड़ा मिसी कीमिन श्री श्रावकेंट दुन सेक ओब सम में इनकेन अनुभव करन सब विन्म में उबुदेसा पवरादेनु लबन मागे शरीर आई රාත්‍රි භෝජනයේ වැළඳූ පසුව උන්වහන්සේ සේම කුසලානන්ද රැගෙන නැවත තුති පුදාමසේ කියමින් සිය ශ්‍රාවකයන්ට දුන්සේක ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න සැබවින්ම මෙය අභිනව වූද අනන්ත වූද ගිවිසුමේ මාගේ රුධිර කුසලානයි පෞකමාව සඳහා ඔබ උදෙසාද සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසාද වගුරුණු ලබන්නේ මාස්සී කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්නේ

याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमरियतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

0: अपविश्वासक भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी वंश्य कुतु सेक, स्वामी वंश्य उतानु सेक, स्वामिनी वंश्य नवत वडिन सेक।
0: एहिन प्यानी उन्वांस्यगे मरणयात् उत्तानयात् सीपत् कर्मिन् जीवनदायक फूप्यात् गैलवीमदायक कुशलाना तपयुबट पुद करम ओबहम सिटमिन ओबट सेवे करन्नट अप सुदुसन वचिन सलकीम गैन अपि ओबट तुति पुदमु। क्रिस्तुन महान्सेगे श्री सर्रेटत् श्री रुधिरेटत् सहभागी वन अप सैम शुद्धात्मनन विसिन एक सत्करनु लबन लेस अपि अवनतवा आयद सिटिमु। स्वामिनी मुल्लो वेहि पेतर पवत्ना ओबगे सुदो स्वभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम स्वभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत ऐतुव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद ओबगे दयानुकम पावकरे विश्वासे तब मिनेश्वन कुत्स्यालंद सीकर ओबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अप सियालंट दयानुकम पाकल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमरियावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन ओबगे कमत्ते टुकले सिलु शुद्धवंतेइंद समग अपिदु सदा जीवनेट सहभागी वीमट सुदु संकल मैनव तवद उन्हा समग ओबट प्रशांत साकिरीमटद ओबगे महिमय वर्णा किरीमटद ओबगे पुत्र येसुस क्रिस्तुन वहन्से मगिन अपट वरम दुनु मैनव उन्वहन्से मगिन्द उन्वहन्से समगद उन्वहन्से करेद सियलु बलते देवी प्यानने शुद्धात्मनन हा समगे क्वडवासन्ना वू ओब वहन्सेट सकल गौरवयत् महिमय।